ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। रूस ने यूक्रेन के दारकुनों कीव और हरकीव इलाकों में तमाम मौसलाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद हमले किए। रूस के दफाई वजारत के बयान में कहा गया है कि रूसी फौज ने रात के औकात में जमीन से दागे आला दुरुस्ती के हामिल हथियारों तवील फासले के मुसलसल ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमले किए और यूक्रेनी फौज अस्करी संतीदार को इस्तेमाल करता तवानाई और मौसलाती ढांचों को हदफ बनाया।

0: मैम ने कहा गया है कि कीफ में रूसी फौज के बारे में इतला जमा करने के लिए इंटरनेट डाटा ट्रैफिक के मुंतकिल होने के मकाम पर मुतयन ATM यूक्रिस बैंक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्क्रीन संतीदारों को बिजली फ्राहम करने वाले तारनिस्ताओं कीफ थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। कीफ खत्ते में अस्क्री लॉजिस्टिक्स इदारों को बिजली फ्राहम करने वाला कीफ थर्मल पावर प्लांट, ट्रिपोली थर्मल पावर प्लांट और कीफ बर्की ट्रांसफार्मर मरकज को हदफ बनाया गया, जबकि हर कीफ इसके अतराफ में जिमिस का थर्मल प्लांट पावर प्लांट्स भी निशाना बने। वजार के एक और बयान में बताया गया कल शाम बर मास्को इसके अतराफ में मुख्त इलाकों में रूसी फजाई दफाई निज़ाम ने 902 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा बुध को होने बड़े हमले जिनके नतीजे में यूक्रेन में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए, इस बात को जाहिर करते हैं मास्को ने अमरीकी तजवीज करता तवानाई जंगबंदी को वाजह तौर पर नजरअंदाज किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा यह ऑपरेशन बिल्कुल जानबूझकर किया गया था, रूस ने पहले कभी भी अमेरिका को इस कदर खुले अंदाज में नजरअंदाज नहीं किया था।
1: अक़वामे मुत्तहिदा ने बहिरे अस्वद में तिजारती जहाज़ों पर होने वाले ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है और खबरदार किया है कि सिविलियन जहाज़रानी, आलमी गजाई सप्लाई चेन, अशिया की कीमतों में इजाफा और मल्लाहों की जिंदगियों को ये खतरे में डाल सकते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जमान स्टीफन दुजारिक ने सहाफ़ियों को बताया कि हम यकीनन सिविलियन जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हैं, ख़ासतौर पर उस हालिया हमले की जो बल्गारिया के साहिल के करीब पेश आया है। दुजारिक ने कहा कि अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया ले जाने वाले जहाज़ों पर हमलों में इजाफा हुआ है, जिसके असरात दुनिया भर की मंडियों में कीमतों पर पड़ रहे हैं।
0: रोमानियन यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के करीब 3 ड्रोन्स का पता चलने के बाद 2 F-16 जंगी तैयारे फजा में रवाना किए, एक फौजी हेलीकॉप्टर तैनात किया। ड्रोन्स की शनाख्त यूक्रेनी शहर वेलकोव के करीब की गई जो रोमानिया की सरहद और डेन्यूब डेल्टा के नज़दीक वाक़ है। रोमानी को काम ने जिला तुलचा के शुमाली हिस्से के रहायशियों के लिए अरब अलर्ट वार्निंग जारी की कि फजा से एशिया नीचे गिर सकती हैं। सूरत हाल की निगरानी के लिए रोमानी की फजाइया के 2 F-16 जंगी तैयार ने उड़ान भरी, जबकि सरहदी इलाकों में निगरानी के लिए एक पोली फौजी हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। वजार का कहना रडार के डाटा से इल्म हुआ कि ड्रोन यूक्रेनी फजाई हदूद में ही रहे, उन्होंने रोमानी की सरहद अबूद नहीं की। वाजा हुकाम की जानब से रोमानी के सरजमीन को किसी फौरी खतरे की अदम मौजूदगी का तय करने के बाद अवामी वार्निंग वापस ले ली गई। नाटो यूरोपियन का रुकन मुल्क रोमानिया द्रा डेन्यूब के साथ यूक्रेन की सरहद शेयर करता है, उसने अपनी सरजमीन के करीब ड्रोन सरगर्मी के जवाब में 12 फौजी तैयारे फजा में रवाना किए हैं। सपेशतर भी द्रा डेन्यूब के साथ यूक्रेनी बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों के बाद रोमानिया के सरहदी इलाकों से ड्रोन के टुकड़े मिले थे। बुखारेस्ट ने इन खदशात के पेश नजर खत्ते में फजाई निगरानी दफाई इकदाम को मजबूत कर दिया ताकि तनाजा नेटो की सरहदों तक न फैल जाए।
1: मैक्सिको में समुद्री तूफान साइमन और इस्तफाई तूफान रेचल की लाए हुई शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीका कौमी तूफान मरकज के जारी करदा बयान के मुताबिक साइमन समुद्री तूफान की शिद्दत इब्तदा में पहले दर्जे की थी, जिसमें बदतरीज इजाफे के बाद मैक्सिको के रियासतों नियारित और सिनालुआ में शदीद बारिशें शुरू हो गईं। मैक्सिको के हुकाम ने दरियाओं में आबी सतह की बुलंदी और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री तूफान साइमन और उस्तवाई तूफान रेचल से मुतासर इलाके ग्यूरेरो और रियासत बाखा कैलिफोर्निया के शहर एनसेनादा में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक और 5 लापता हो गए हैं। एनसेनाडा में एल पेपला नाले के करीब तकरीबन 300 फौजी अहलकारों की शिरकत से तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में सैलाबी रेले ने गाड़ियों और रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुँचाया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।
0: सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से मुखालतब है, लीजिए अब उशल आईमान के आवाज में तुर्की की समाप्त। ये गाने के बोल हैं खरान क्लार्दा सेवेमेम सेंट।

जब एक भट्टी के अंदर का दर्जा हरारत 1400 डिग्री के करीब पहुंच जाता है तो आम खाम माल किस चीज़ में बदल जाता है। रात को रोशन करने वाले एक चिराग में, किसी दस्तरखान को सजाने वाले एक रंगीन जाम में, या सदियों तक एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने वाले किसी फन पारे में। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम फिलिस्तीन के जुनूब में वाक़ शहर अलखलील का रुख करते हैं। तसव्वुर करें कि आप अलखलील की तंग पथरीली गलियों और पुराने बाजारों के दरमियान घूम रहे हैं। उन तारीखी इमारतों के पीछे हरल कज़ा ज़ैन यानी शीशा घरों का मोहल्ला फैला हुआ है, जहाँ किसी ज़माने में शीशा बनाने वाले कारीगर बड़ी तादाद में रहा करते थे। यहाँ आग के सामने बैठ कर काम करने वाले इन उस्तादों की कहानी महज एक पैदावारी तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीन की सकाफती और इक्तसादी तारीख का एक अहम हिस्सा है। अलखलील के पुराने शहर को 2017 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा फहरिस्त और ख़तरे से दो चार आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। बाद अजां 2025 में अलखलील शहर ने दस्तकारी और लोक फ़नून के शोबे में यूनेस्को के तख्लीकी शहरों के नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार की। इन इमारतों और गलियों में छुपा हुआ ये विरसा नस्ल दर नस्ल काम करने वाले कारीगरों के हाथों में आज भी जिंदा है। फिलिस्तीनी सरजमीन पर शीशे की तैयारी की तारीख कदीम दौर तक जाती है। अलखलील में शीशा साजी खासतौर पर रोमन दौर से परवान चढ़ी और क़ुरून वुस्ता में उसे एक अहम और मशहूर फ़न की हैसियत हासिल हो गई। बाहिरे रूम के मशरक़ी हिस्से की फिनिशियन दुनिया से मंसूब रंगीन शीशे की तैयारी उस तकनीकी विरसे की बुनियाद थी। कबल अज़ मसीह पहली सदी के दूसरे निसफ हिस्से में सामने आने वाली शीशा फूकने की तकनीक ने इस सनत में एक बड़ा इनकलाब बरपा किया, जिसने सांचों के जरिए शीशे को शक्ल देने के बजाय कारीगर की सांसों से ढलने वाले एक शाहकार में बदल दिया।

उसके रंग थे। गहरे नीले रंग के लिए कोबाल्ट का मादनियात और फिरोजी रंग के लिए कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता था। कारीगर धात की फूंक मारने वाली पाइप के सिरे पर पिघला हुआ गर्म शीशा लेता है, उसे घुमाता है और अपनी सांसों के कंट्रोल दबाव से इस माया को फैलाता है। इसके बाद वो दस्ती औजारों की मदद से उसे हतमी शक्ल देता है। चूंकि शीशे का दर्जा हरारत, उसका गाढ़ापन और ठंडा होने की रफ्तार इस पूरे अमल पर बराह रास्त असर अंदाज होती है, इसलिए एक कारीगर यह तजुर्बा किसी लिखी हुई किताब या नुस्खे से नहीं बल्कि बरसों तक भट्टी के सामने बैठकर अपने उस्ताद से सीखता है। अलखलील की शीशा साजी का यह फन सदियों तक तिजारती रास्तों के जरिए परवान चढ़ता रहा, खास तौर पर ममलूक दौर में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान मशरकी बहरा रूम में शीशे की पैदावार ने एक बार फिर जोर पकड़ा। अलखलील ने दमिश्क, उर्दुन और मिस्र के साथ कायम तिजारती ताल्लुकात की बदौलत अपनी मसनूआत को इलाकाई मंडियों तक पहुँचाया। उस्मानी दौर में भी फिलिस्तीन और अनातोलिया के दरमियान तिजारती रास्तों ने इस रवायती सनत को सहारा दिया। अलखलील में सुराहियाँ, ग्लास, चराग, चूड़ियाँ और आरायशी अशिया तैयार की जाती थीं। ये मसनूआत यरूशलम, नाबलुस और काहिरा जैसे मराकज़ में भेजी जाती थीं और याफा बंदरगाह के जरिए यूरोप की मंडियों तक पहुँचती थीं। 19वीं सदी के वस्त के शरई अदालत के रिकॉर्ड में अलखलील में शीशे के 7 कारखानों का जिक्र मिलता है, जबकि सदी के आखिर के रिकॉर्ड में उनकी तादाद 11 बताई गई है। अलखलील की शीशा साजी को 1873 की वियना आलमी नुमाइश में शीशे की आरायशी अशिया के साथ पेश किया गया, जिसने इस रिवायती फन को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया। 20वीं सदी में यूरोप से आने वाली फैक्ट्रियों की मसनूआत के मुकाबले सनतकारी और इसराइल की तरफ से आयत करदा नकलो हरकत की पाबंदियों, सियाहत में कमी और बरामदी मसाइल ने अलखलील के रिवायती कारखानों के लिए पैदावार और मंडियों तक रसाई को इंतहाई मुश्किल बना दिया। इस सब के बावजूद अलखलील की शीशा साजी आज भी उन कारीगरों के हाथों जिंदा है जो इस रिवायती पैदावार को जारी रखे हुए हैं। यहाँ तैयार होने वाला शीशे का हर टुकड़ा मिट्टी के खाम माल, कारीगर के तजुर्बे और पुराने तिजारती रास्तों की तारीख को आज के दौर में समेटे हुए है। अलखलील में आग ने शीशे को शक्ल दी और रोशनी रंगों में ढल गई, लेकिन किसी कौम की याददाश्त को संभालने वाली वाहिद चीज भट्टी के अंदर का वो दहकता हुआ शीशा ही नहीं था। बाज़ औक़ात माजी किसी कपड़े पर कढ़े हुए रंग बिरंगे धागों में छुपा होता है, कभी किसी खातून की साबिर उंगलियों से बने हिंसी नमूनों में और कभी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली कढ़ाई के अंदर। तो क्या एक कपड़ा बोल सकता है? क्या एक सुई का निशान, धागे का रंग और एक स्कार्फ का डिज़ाइन किसी कौम के जुग्राफिये, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी शनाख्त को बयान कर सकता है? अगले हिस्से में हम फिलिस्तीन की सकाफ़ती तारीख को आग में नहीं बल्कि धागों में तलाश करेंगे। हम शिफिया की बनावट से लेकर रिवायती कढ़ाई, ख़वातीन की मेहनत और इलाकाई शनाख्त तक के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।